0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Benvenuta online, Macerata.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: ससिकल सारे नू तुसी सुन रहे हो रेडियो हैंडबॉल इटली तो पहला रेडियो जिधर हैंडबॉल बारे कल करता है पूरे इटली वेच ससिकल मेरे वीर ते पहना नू जिधिया इंडिया तो सुन रही है ने सुंदर वो ते लाइक मारो फेसबुक ते पेज ते हैंड रेडियो हैंडबॉल